0: देव तारे हम भगवान की जय। श्री विश्वगंधा शाह परम स्वामी अश्वंज गुरुदेव की जय।
1: Yeah, repeat now, no?

0: दीप नारायण भगवान की जय। ओम नमो ओम ओम इज द इटर्नल
1: ओम ये नेकोनेचने
0: ओम कार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंती योगी नम ईच एंड एवरी योगी ऑल्सो दे मेक प्रणाम टू द ओम ओम कार बिंदु उसके ऊपर में बिंदु है
1: तो यस बिंदु अब शिष्य योगी से कलानी प्रत ओम
0: विमे के ओम
1: कृष्ण में ओम
0: मात्रा एंड बिंदु
1: मात्रा अब बिंदु
0: सो दिस इज अवर गुरुदेव ऑल भगवान ऑल गॉड यू सेड आमेन व्हाट इज आमेन आमेन इज कमिंग फ्रॉम ओम
1: A vy to je všude, yes. Gurudev, je to Bůh, vy říkáte Amen, ale to je to samé, co Om. To pochází z Om.
0: Allah, it is also Allah, yeah?
1: A my říkáme it's Allah.
0: It's the same také, language.
1: Je to jenom jazyk, ale jenom v jazyce.
0: So, Om.

0: जय हो।
1: समय बड़ी कीमती है भजनों सजनों, मारो एक ही भजन है कि आप प्रचार करे सामराय गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे।

सब जीव आप समान जाने आप तनो गुण बिना पशु समान अजिया गल तनो मिनख मूंगो जान राखे मिनख पनो। तो गाय जिंदे दी सेवा कमाए मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं, अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं, आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में। गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में। अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा। गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया, नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है।

0: दाग पाप का धो लो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे, मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो, दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो। हो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर। एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पहुंचू मैं। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माता की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना जो आपने नाम लेवे, जो आप भजन सुनता रहे जो। साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखिए, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो।
2: सर जाना नहीं है, बैठना है। दो गावना है, दो
1: जय हो। आप रखना मान है।

ए ओलियों दोलियों हंसते घूमता तुरी अठार लग त्यागी हां ओलियों दोलियों।

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे सबकृति दे त्यों भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: क्यों है गौ माता है नहीं गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है और जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृत में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊ नाला ज्यादा है टाइम इज मनी मैं आप बात बार बार कहूं कि समय दनेर मैं ज्यादा बेलड़ा उड़ू देने उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेमरा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपी चंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोड़ महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कोन मिलियो महीना डोड़ महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेन कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बातें ध्यान एक दिन संयोग ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न कौन मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन किया बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इनकी तो कोई मगतो ही को नहीं भूखा मरे है थे जा इन कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तना दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है आठा को नहीं कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति

0: का देन दान मैं मांग रहा हर वारी, मैं उनका हूँ भिखारी। मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी, अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी, मैं उनका हूँ भिखारी। ये बात मत ओटला, तू भूखा मरे तू हाल माने गढ़ में जीम ले, थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो, और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मने क्यों जिमावो, अरे क्यों कहीं जिमावो, राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे, तुम भिकारी है, तुम मगतो है, तुम भूखा मरे, धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है, धर्म री माँ कौन है, अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है, वो राजा भी बुद्धि जीवी हो बो कि धर्म री माँ है दया, मन धर्मा तो दया आई जनी तुम्हें जिमाऊ, वह जन तर राजा ने और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है, अरे राजन वो माने कौन बो के धर्म रो बाप कौन है, जन वो सोचली मन में आप इन्हें भिकारी समझा, भिकारी तो कौन है, आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है, जाए देख के बीरो नूर पहली मरा सिरेट भाई क्या करी नहीं, वो भगवा बेग एक अग्नि है, इमें सब चीज जले, ई वास्ते बीरो नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना कौन कौन आगला संत महात्मा भस्म लगावता शरीर के भस्मी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बड़ावता ताकि कुरूप दी के शरीर बिन शरीर ने सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो कहीं बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो यो, तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं, गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पूट दिखाया ए योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं, बबूत रमाया जाय प्रणाम करण कियो सा, धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष, क्यों जन राजा मनि चार अंगल टुकड़ा में संतोष है, जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी, जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी, कोटि के अरब खरब बये तब द्रौपदी होने की चाह जगेगी, उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी, तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी, मच्छंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी, भरतरी राजा भूप भयो वैरागी, इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं, भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं, करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं, करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं, करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं, आर्ट इज लाइफ।
1: जय हो। ढोलक वाला पधारो ने ढोलक, हाँ ढोलक बजावा वाले। ढोलक बढ़िया, ढोलक बजा। पीला बुसरट वाला पधारो सा, ढोलक बजाव वास्ते पधारो।

0: की, बोलो दीपकण भगवान की
1: जय हो,
0: बोलो माधव कृष्ण भगवान की
1: जय हो,
0: विश्व गुरु महेश्वरन जी महाराज की
1: जय हो।
2: हेलो।

की जय हो देव देवपुरी सा महाराज की जय हो, महात्मानंद जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री मेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। सत स्वागम कीजिए और तजिए लो भयंकार, भूल सुख परी धीरे अण सत्री संगत रे माय। तप का वर्ष हजार है और सत्री संगत पलये, इनके बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक। बोलो सतगुरु भगवान।

नमः स्फटिको महेश्वर देवताभ्यो नमः शिवपरिवार देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेव

वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो गौब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्णप्रधान श्री सांब सदाशिव स्फटिक महेश्वर शिवपरिवार देवताभ्यो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओं सुमुखश्चैकदन्तश्च कविलोकजगर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विद्नाशो गुणाधिपः दुम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो जाननाद्वादशैतानि नामानि यपटे तृणयाद्भि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृगमे चदा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैवा विघ्नस्तस्य निजायते शुक्लामरतनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विचितार्थसिद्ध्यर्थं भोजितो यस्तुरात्मरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽनुस्मरामि लाभस्ते सां दस्ते सां कृतस्ते साम्राजया येषामिन्दिवृष्यां हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोधनोर्द्रादित्रिजीवजीवभूतिध्रुवानि त्रिमतिर्मुमा अनन्याचन्दयन्तो मा ये जनाः प्रियभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहाम्यहं स्मृते सकल कल्याणं भाजन यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तुनः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विश्वेशं माधवन्तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहा गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पुरस्कारान् समर्पयामि। सङ्कल्पः हस्ते अक्षुता हस्ते गन्धाक्षत द्रव्यं च जलमादाय ओम ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः। श्रीमद्भगवतो महाभृतस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो निजतिः प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैव समन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे चेक रिपब्लिक देशे अंतर्गते खिल्की ग्राम स्थिते समुपा प्रांगणे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये पराभवनामनि संवत्सरे रविदक्षिणायणे महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे शुभे आषाढमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ अद्य वासरावासरोस्तु अद्य सोमवासरान् इन्दुवासरान्वितायां शुभनक्षत्रे हस्तनक्षत्रे कन्यास्ते श्रीचन्द्रे कर्कस्ते श्रीसूर्ये वर्षा ऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे वर्षा ऋतौ कर्कस्ते श्रीदेवराजगुरौ शेषे सुगृहे सुयितायितं राजस्थानानि स्थिते दुदत्सु एवं ग्रहगुणगणविषयनुट्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोत्पन्नोऽहम् अच्युतगोत्रोत्पन्नस्य परमपूज्यस्वामिवर्यः सर्वेषां भक्तजनानां मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थं लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्ति अर्थं अखिल कुटुंबस्य सहितस्य सपशोः समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा अपमृत्यु परिहार द्वारा आयुः आरोग्यता सिद्धि अर्थं मम जन्मराशेः अखिल कुटुंबस्य वा जन्मराशेः सकाशात् ये केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टमद्वादशस्थानस्थित क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणञ्च यत्सर्वम्।

तद्विनाशद्वारा एकादशस्थान स्थितवत शुभफल प्राप्ति अर्थम्। आदित्यादि नवग्रहाणाम् अनुकूलता सिद्धि अर्थम्। इंद्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नार्थे सिद्धि अर्थम्। आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप शमन अर्थम्। मम सर्वेषां भक्तजनानां उत्तरोत्तर आरोग्यता सिद्धि गुरुभक्ति प्राप्ति अर्थम्। मम सर्वेषां विश्व अखिल भारतवर्षाणां आश्रम मध्ये सर्वेषां जनानां उत्तरोत्तर मैत्री भाव करुणा भाव सद्विचाराणां प्राप्ति अनुकूलता अर्थम्। उत्तरोत्तर भवानी शंकर महारुद्र देवतानां सद्भक्ति प्राप्ति अर्थम्। उत्तरोत्तर गुरुनिष्ठा प्राप्ति अर्थम्। अद्य दिने इंदुवासरान सोमवासरान उपलक्षे यथाशक्ति षडंग रुद्रा अभिषेक कर्मणि सर्वेषां भक्तजनानां समुपार्श्वे जल दुग्ध मिश्रित जलधारा भी नानाविध जल मिश्रित दुग्धधारा भी सर्वेषां मंडल समूहवासीनां अद्य दिने स्फटिक महेश्वर शिव परिवार पूजना अर्चनं अहं करिष्ये गणपतिं पूजनं करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शुभसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु सूर्यपूजनं।

मानस्तो के मानागिमानु गुगमानु जुगामानु वीरा निर्वामिनो पदिरे अभिमंदासमित बाबामयस्त्राय फट ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नकभूषणम मृगधरम वंदे पशूनापतिम वंदे सूरजांगवन्विनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं जवरदम वंदे शुभम शंकरम ओम पूर्वस्मः स्फुटिक महेश्वर देवताभ्योन्मः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि धाराकरणम पात्र पूजनम।

சத்யபதே ஜதுபதே விஸ்வமுஷ்டம் கிராமே சிவநாதரம்மா ஜாதே திருஷி பாதனோ சிவாரசி பிகஜித யானோடய நமஸ்தேஸ்வாச்சீனாச்சேஸ்மன்மாதிரேபுவாதிவாசி நீலகிரிவாசிகண்டாதிபகுருதாபிஷதாஹா தேகாகுதிரேஜனேவதன்வானுசி ஜெயபிருக்ஷக்விஜ்ஷக்பிஞ்சரா நீலகிரிவோபிலோகிதாஹா தேகாகுதிரேஜனேவதன்வானுசி ஜெயபூதானாமதிபதிவோபிஷகாசா கவர்த்தினாஹா தேகாகுதிரேஜனேவதன்வானுசி ஜெயதிருதானேவதன்சிரேகாஸ்பானிகங்கணாஹா தேகாகுதிரேஜனேவதன்சி நமசேதாவந்தஷபூகபூயாகுசுத்ராபிஸ்திரே தசதட்சிணாதசபிரதீசிரதசோதீசிரதசோர்த்வாஹா திப்யோ நமோஸ்தேனோ வந்ததேனோ ருடயந்து தேஜந்திக்மோதிஷ்ணோதேஷ்டமேகாஞ்சம்பேத்மஹா நமோஸ்ரேப்யோ ஜெயந்தர்க்ஷேஜேகாமக் பாதகவாதேப்யோ திப்ராச்சிர் தசதட்சிணாதசபிரதீசிரதசோதீசிரதசோர்த்வாஹா திப்யோ நமோஸ்தேனோ வந்ததேனோ ருடயந்து தேஜந்திக்மோ ஜனோத்வேஷந்தமேகாஞ்சம்பேதமஹாம்ஸ்வாஹாபுவாஹாபுவம்மாபைகுங்கோமபிரதே தவமனஸ்தனுகுபிரதாபஜாவந்தாசியமேகதேருத்ரபாகஃஸஹஸ்ரசுத்ராமிகயாதந்துகுஸ்வாயகதேருத்ரபாகஃஸ்தபசுவபரத்ரமதிபசபதேமந்திரமகம்பாம் ஜதானோபுசஸ்கர்த்யதானஹா ஸ்ரீஸ்கர்த்யதானோமிவசாயாதோ விகஜமசிவிகஜங்கவிஸ்வாயபுருகாவிகஜம்மா உகம்மேகாயமேகேத்ரமகஞ்ஜாமைஸ்கந்திமிஷ்டபரத்ரம்மா உர்பா ருகுமிவந்தனாதிதோமுக்ஷேமாமதஹா எத
वसु चमे वसते चमे क्रम चमे सक्ते चमे अर्थ चमे एम चमे इत्याज में गदच में जतने गदा मग्न चमे इंद्र चमे सोम चमे इंद्र चमे सविता चमे इंद्र चमे सरस्वती चमे इंद्र चमे भूखा चमे इंद्र चमे बृहस्पति चमे इंद्र चमे जतने गदा मग्न चमे इंद्र चमे प्रणु चमे इंद्र चमे दाता चमे इंद्र चमे दुट्टा चमे इंद्र चमे भरत चमे इंद्र चमे विश्वे चमे देवा इंद्र चमे जतने गदा ओम पृथ्वी चमे इंद्र चमे इंद्र चमे इंद्र चमे इंद्र चमे देव चमे इंद्र चमे समाज चमे इंद्र चमे नक्षत्राणि चमे इंद्र चमे दिशा चमे इंद्र चमे जतने गदा अग्गो सुषमे रश्मे शमे दाभ्य शमे दीपति चमो बागु चमे द्रजामे चमे इंद्र ऐंद्रवान चमे मरुणम मैत्रा वरुण चमे आत्मने चमे प्रतिपन्नादि शुक्र चमे मंदे चमे जतने गदा आग्रहणे चमे पिशुपदेव चमे ध्रुव चमे वैश्वादन चमे अंदराग्नि महावैश्वदेव चमे मरुतपति चमे निकेवल चमे सारदर चमे सारस्वत चमे वादनी वद चमे हरि योजन विश जतने गदा ऋतचमे जमदाचमे वायुभ्यान चमे द्रोण क्लिशम ग्रावान चमे दिगवन चमे कूत ब्रजमा आदि बने चमे बेजमे ब्रजमे सुगाकार चमे जतने उदाम मकर चमे गर्म चमे अग्नि चमे गर्म समय कृष्ण में सूरज में प्राण चमे सुमे चमे पृथ्वी चमे दीदि चमे दीदि चमे देव चमे गोलया सक परे योजि चमे जतने उदाम प्रतन चम रतव चमे संबत्त दर्शमे हो रात्रि गुरुपुष्टि विवरेधंतरे चमे जतने उदाम एकात्मे तदर्शमे तदर्शमे पंचजमे पंचजमे सप्तजमे सप्तजमे नवजमे नवजमे एकात्मे एकात्मे त्रयोजमे त्रयोजमे पंचजमे पंचजमे सप्तजमे सप्तजमे नवजमे नवजमे एकविकुद्मे एकविकुद्मे एकत्रविकुद्मे त्रयोगुद्मे पंचविकुद्मे पंचविकुद्मे सप्तविकुद्मे सप्तविकुद्मे नवविकुद्मे नवैकुद्मे एकत्रविकुद्मे एकत्रविकुद्मे चतसृचकुद्मे इष्टमे चिद्विग्दाम् ओम चतसृचमे इष्टौ चमे इष्टौ चमे द्वादशमे द्वादशमे घोटजमे घोटजमे विगुद्मे विगुद्मे त्रिविगुद्मे त्रिविगुद्मे अष्टाविकुद्मे अष्टाविकुद्मे द्वात्रिकुद्मे द्वात्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे घटत्रिकुद्मे चतुर्भारिकुद्मे चतुर्भारिकुद्मे चतुष्वारिकुष्मे चतुर्वारिकुष्मे अष्टाद्वारिकुष्मे चतुर्विंशतम् त्रयोविंशमे त्रिविंशमे द्विवारिकुष्मे द्विवारिकुष्मे पञ्चाविंशमे पञ्चाविंशमे त्रिवत्सजमे त्रिवत्सजमे त्रिवत्सजमे त्रिवत्सजमे त्रिवत्सजमे अष्टावार्तमे अष्टावार्तमे उक्षाजमे वसाजमे वृक्षमे धेनुषमे जगदाम् ओम बाजाय स्वाहा प्रस्वाय स्वाहा बिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा रतय स्वाहा निन्दाय स्वाहा मुदाय वैन कुजनाय स्वाहा विन कुजना अन्त्य स्वाहा अन्त्य भुवन सा भुवन सिद्धे स्वाहा दिवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यन्ते रन्द्रा इन्दस जन उर्जे त्वा पृष्ठेत्वा पृष्ठेत्वा प्रजानान् त्वा अधिपत्याय आयुर चद्यङ्गदां प्राणो चद्यङ्गदां चक्षु चद्यङ्गदां श्रोत्रं चद्यङ्गदां वाक् चद्यङ्गदां मनो चद्यङ्गदां आत्मा चद्यङ्गदां ब्रह्म चद्यङ्गदां ज्योतिर् चद्यङ्गदां गुस्वर चद्यङ्गदां पृष्ठं चद्यङ्गदां चद्यं चद्यङ्गदां तोमश्च जज्जुर्त्यजाम च वृक्षरतन्त्रं च स्वरदेवागन्मामृता भूम प्रजापते प्रजाभूम विट् स्वाहा हरिः ओं मारचम्बा चम्रपदे मनोज प्रभदीय साम्राणं प्रपदे चक्षुभागो जातौजो मयि प्राण पानो जन्मे छिद्रं चक्षुगो मनसो मनसो बाधितिरन्नं बृहस्पति मे दधातु शन्नो भवतु भुवनस्यजस्पतिः भूर्भुवः स्वः ओं गयानुचराभुवदूति सदावृदा कया सतुश्चयावृदा कृत्वास्तियोमदानं गोष्ठोमतदन्दजा दृढाचिदारुजभयो दृढाचिदारुजे वसु अभिगुणासखी नामविदाजिदृढामशदम्बुवासि विदुखि कयाधुन्न उतिया विप्रमन्दस्य प्रकन्ना कया स्तोद्रभिया भरा इन्द्रो विश्वराजदेशन्नो अस्तुतिपदेशञ्जपदेशन्नो मित्रः सन्नो भोतृजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पर सन्नो सन्नो मित्रः शम्भरुणः सन्नो भोतृजमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिरधि सन्नो विष्णुर्गुमा सन्नो बाधः भवदाग् सन्नो सन्नाकनग्रदा प्रजन्यो अभैवरिकुतो आन शम्भुवन्द्राशग्र त्रिः वृदाम सन्न इन्द्राग्नि भवदामोऽपि सन्न इन्द्रा भूगुणा वाजसन्द्रो सोमा सुविधा सञ्जोः सन्नो देवीरविचया भूभवन्तु विदय सञ्जोर्वसन वन्दुना स्योना कृतनो भवान् रक्षरा निवेशने दच्छानः सर्वदृतापोष्टामयो भुवस्थान ऊर्जि ददातुना महेरणाय चक्षुषे जोभः शिवतमोरसि बाजयतेना उषधीरिग्मातरस्मारङ्गमवो जसक्षायन्दापोजनयिता जना द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्ति पृथ्वी शान्तिराम शान्तिरुदय शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति तृतीयतृगुहः मित्रसमा चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्ष मित्रस्य चक्षुगा समीक्षामहे तृतीयतृगुहमा ज्योक्ते सदृशिभ्या संयोक्ते सन्दृशिभ्या संभा नमस्ते हरसौचके नमस्ते सुवर्चके अन्यास्ते स्मत्तबन्धोयुतया भावकोस्मभिज्ञो शिवो भव नमस्ते सु विद्युते नमस्ते स्नायतराय नमस्ते भगवन् स्वाहा स्वाहा समीयसे चितोयिता समीयसे ततो नो अभयं कुरु जन्ना कुरु प्रजाभ्यो वैन्नापशुभ्यः सुमित्रिया न आपवोगतया सन्तु दुर्मित्रिया तन्मयि सन्तु जोस्मान् दिवश्चिन्

अमृताभिषेकोस्तु शांति पुष्टि दुष्टि शास्तु ओम शांति शांति शांति ओम स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम पावित्रेस्तोभ्यो सवितृभ प्रसव उत्पुनाम्य चित्रेण पवित्रे सूर्यस्यास्मिभिः तस्याते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य पवित्रते पवित्रभूतस्कामः पुने दच्छकेयं मा उत्तरषडङ्गन्या ओमापूष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे जो वहा शिवतमो रजतस्य पादय देहनः उषतीरवम

0: कुछ ना कुछ तो, कुछ तो हाँ न्यास कर लो जब तक।
1: ओम विश्वादचक्षुरुद विश्वदोमुखो विश्वदो बाहुरुद विश्वदस्पाद संभाव्यान्तमति संपत्रिर्त्या वा भूमिजनयन् देवैकहानिदधायुषुड मानस्तोकेतनैमानाग्युमानोगुमानुष्टेकामानोवीरान्द्रवामिनो बदीरे हविक्मन्दस्मितभावामेस्त्रायफट। ओम मृत्युञ्जय महादेवत्राय मां शरणागतं जन्म मृत्युजराव्याधिपीडितं कर्ममन्दनैः। भगवते साम्यजदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पुरस्कारान् समर्पयामि। ओम गौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुमन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतुडे हिमालयतु केदारं कुष्मेदं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातपटे नरः तप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम पूर्वस्वास्मृतिकमहेश्वरदेवताभ्यो नमः।

0: मन्क्यं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं ममत्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यरतेऽस्मिन् पुरमदनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदधुरयक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिशुगुणभिन्नासु तनुषु अवव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याघ्नोऽसि विदधतैकैजडति किमि
1: कुतर्को
0: किं कायस्य किल किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यै त्वय्यवनरसुत्तो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहा

यस्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्या त्वत्सेवा समधिगतसारम्भुजवनं बलात् कैलासे त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पातालेऽप्यलसचिदाङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति कला यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधुश्चक्रे बाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितर् त्वरित्व चरणयोर्नखस्यापुण्यत्यै भवति शरसस्त्वय्य वरतिः अखाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयासीद्यस्त्रिनयनविशं संहृतवत सकल्मासकण्ठे तव न कृतेन श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिन असिद्धार्थानैवं क्वचिदपि सुदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयनो यस्य विशिखाः सपश्यन्ने सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरतर्व्यात्मानैविशुपत्यपरिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयमिदं पदं विष्णोर्ब्राह्म्यत्पजि परिभृगुणग्रगुणं मुहूर्दौ दंस्थायत्य निभृतजडाता।

ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोकिनी व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ह्रीं रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ ज ॐ जय शिव शंकर स्वामी परिपूर्ण

ओम जलेन शीतलीकरण पुष्पैः देवतायो नमस्ताभ्याम् आत्मनं गुरुवृक्षालिस्त्वाडम्बडेत ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्ददेवा तानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्नातेकनागं महिमानः सत्यन्तचरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं राजातिराजाय पृथय्य साहिने नमो वयं वै शृणाय कुर्महे तमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणु ददातु कुबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रप्रियायुषा सार्वभौमः सार्वायुषान्तात् प्रारदात् ऋतुभ्यः समुद्रपर्यन्ताय एकराडितप्तेत श्लोको विगितो मृतापरिवेष्टारो मृतस्य वसङ्गृह्यावक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवासपात इति ओम्मा विश्वपदचक्रुरुद्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद्विश्वतस्पात सम्भाव्यान् दमति सम्भद्रद्या वा भूमिजनयन् देव एकः ओम एकदन्दायद्महे कृदन्दाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओं तद्भुर्गा यद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा सुमन सुगन्धित सुमन युता सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करु भोलेनाथ करु स्वीकार ओं गुरुवस्मः श्री स्फटिकमहेश्वर शिवपरिवार देवताभ्यो नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली गजानंद सरकार की जय द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव की जय स्फटिक महेश्वर देवता भगवान

की जय श्री अलकपुरुषा महादेव की जय श्री देव पुरुषा महादेव की जय दीप नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी महाराज की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री

बन इसी मंत्र से होवे मंजन इसी मंत्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

जन सब जनसी मन होवे मन मंजन ऐसी मंत्र वे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदो श्रीदीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।

commercialized. So these kind of studies we are trying to give to the people, to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because still the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं आप स्कूल का समय हो गया चालू भी हो गए आप मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा दिसंबर में जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में अभी क्या स्टडी करना है तो आप ऐसे कीजिए 365 दिन है आप आज 6 महीने के लिए खा लेना एक दिन में 4 रोटी आप लेते ठीक है सुबह 2 शाम को 2 ठीक है मांगे चलो 5 रहते 6 लेते तो 6 महीने में कितना दिन होगा 180 दिन 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना 900 रोटी तो ठीक है आज सुबह हम बना देंगे भंडारा 900 रोटी सबको खानी है फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से संभव है इतनी मामूली चीज है अब क्या है 900 रोटी खा लीजिए क्या है कोई खास नहीं है 6 महीने का आपकी भूख नहीं लगेगी ऐसे नहीं चलता है ना तो अगर ऐसे नहीं चाहते आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में वो एक रात भी नहीं 2 घंटे में अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में 11 बजे समाप्त सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे संभव है या नहीं बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल तो पढ़ना होता है रोज डेली तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं हर दिन 5 रोटी खा सकते कोई टेंशन नहीं 10 रोटी भी खा सकते हैं लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते हैं हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते हैं 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा तो 6 महीना कितना हो गया घंटा 180 तो हो गया नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है तो
तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना। क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80%? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो Not only that we have a Gyanputra program here, we have also our, with the blessings of our Gurudev, we have yoga programs here, and we have many our students from West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends, and learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads. So definitely we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish. And I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by work and so on. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख

Good. Thank you. Thank you and me hunyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the Vidyarthi turn to the don't go close to the फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आजा खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय.

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ये खड़े हैं, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी की? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवेश्वर महादेव की
1: जय,
0: माधव कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: नरसिंह अवतार भगवान की, भक्त और भगवान की
1: जय।

0: बोले श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव आनंद जी भगवान की जय।
1: होली गुरु जी सेज साधन चारा करो हरि प्यारा जिन से होवे मोक्ष तुम्हारा।
0: होली गुरु जी स्पुने अचेस्ता।
1: There are four ways, four paths, dear ones, to achieve or to go on the path of moksha, of liberation.
0: Sunt patru căi cu care puteți atinge eliberarea.
1: The first one, viveka vicharo, think and

दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलखपुरी।